स्वास्थ्य मारा अपने जन का पर्दा टाका अपने सेवक की सर पर रखा अपने दास को देह बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात राखा ताकि गत मित कोई न लाखा प्रभ के सेवक को न पहुंचा प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह जिस प्रगटाया निकी कीरी मह कल राखा भस्म करा लस्कर कोट लाखा जिस का सास नंग काढ़ त्याप ता को राखत दे कर हाथ मानस जतन करत बहु पात तिसके करतब बिरथे जात मारा न राखा वरना कोए सर्ब जियां का राखा सोए।

अमृते हो मन तन प्रपीय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके छबर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामै नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोला हो जास जेह बा दिन रात प्रभ अपना जन की नींदात करह भगत आत्म का चाए प्रभ अपने सो रह समाए जो हुआ होवत सो जाना प्रभ अपने का हुकम पछाना तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पहर प्रभ असह हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिस की सरना सर्ब सुख पाव है तिसका दरसो सब पाप मिटाव है अवर स्यान सगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजा हो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसका संग सिख उदरा नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुरबचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारै गुर का गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन मह सह आपस कौ कर का छना जनावै हर हर नाम हृदय सद त्यावै मन बेच सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए नेह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सत गुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर कौ बल जाओ सर्ब निधान जी का दाता अठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्मा एक है आप नहीं कछ भरमा सहस स्यान पलाया न जाई है नानक ऐसा गुर बडभागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर बचन करना गाने मन संतोख आतम पति आने पूरा गुर आख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखा होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावै तिस लय मिलाए जिह बाएक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहु बोलन पहुँच प्राणी अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किना न पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने हो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमरसो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया का संग न लेपा मन मह रख हर हरे का अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तह ते नासे तप्त माहे ठांड वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे भव चूका निर्भव होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सा तिन कृपा तारी सा संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन
ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓ ਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਨਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਉਤਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭਇ ਪ੍ਰਗਾ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਵਰੋ ਭਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਮਹਿਰ ਧਾਰ ਹੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹ ਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਥ ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚ ਹੋਵ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰੱਖ ਹੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹਿ ਜਿਸ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠ ਧਾਵ ਹੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛਾ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਅਨੇਕ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰਬ ਖੁਦ ਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵ ਤਿਆ ਬੈਠਾਏ ਤਾ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ ਕਾਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਬਿਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਓ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਨਕੋ ਭਾਵ ਨ ਛੁਟਨ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰਿਤ ਸਾ

संग ना चाल सतेरा तना, तू क्या लपटाव है मूर्ख मना। सुत मीत कुटंबर बनता, इनते कहो हो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया बिस्थार, इनते कहो हो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझा ना बेगाना, नाम बेसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेहे एयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करहो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल रख हो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो। सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतर सुमैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल। होहे चिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। छाड सियान पसगली मना, साध संग पावह सच तना। हर पूंजी संच करहो ब्योहार, इहा सुख दरगह जयकार। सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख। एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गावो अनंत, मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप।

का फिरत फिरत प्रबाया परिया तो सरनाई। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी। जाचक जाना जाचा प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम। साध जना की मागो तुहूरा पार ब्रह्म मेरी सरदा पूरा। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम त्यावो। चरण कमल स्यो लागा प्रीत भगत करो प्रभ की नितनीत। एक ओट एक आधार नानक मागा नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हरस पावा बिरला कोए। जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग। परे सर नान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया। ऐश पुनि सरदा सब पूरी रब रहया सद संग हजूरी। जैस का सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरा जे काल न पाना सो क्यों बिसरा जे किया जाना। सो क्यों बिसरा जे न सब किछ दिया सो क्यों बिसरा जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरा जे अगन मह राखा गुर प्रसाद को बिरला लाखा। सो क्यों बिसरा जे बिखते काढ़ा जन्म जन्म का टूटा गांडा। गुरपूरा तत् है बुझाया प्रभा पना नानक जन त्याया। साजन संत करहो एहो काम अंत्याग जप हो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अबरह नाम जपाव हो। भगत पाए तरिया संसार बिन भक्ति तन होसी चार। सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए बिश्राम। सगल दुख का हो वतनास नानक नाम जप हो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतरी ही सुआओ। नेत्र हो पेख दर्श सुख होए मन बिगसा साध चरण तो होए। भगत जना का मन तन रंग बिरला को पावै संग। एक बस्त दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए। प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल। नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्ब कटां करत प्रतपाल। आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत। हम निर्गुणी आर नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पहाई। बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास सर्ब सुख नानक प्रगास। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। अपन किया नानक आपे ही फिर जाप अष्टपदी। जब कारे हो कछना दृष्टिता पाप पुन्ना तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चेहन न जापत तब हरख सोग कहो किस व्यापत। जब अपने आप पार ब्रह्मा तब मोह कह किस होवत परमा। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करना हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी।
जब एक है हर अगमा पार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय, तब शिव सकत कहो कित ठाय। जब आप है आप अपनी जोत तरह, तब कवन निडर कवन कत डरा। अपन चलत आप करना हार, नानक ठाकुर अगमा पार। अबिनासी सुख अपना सुना, तह जन्म मरण कहो कह बिना सुना। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही अचरजा, नानक अपन रूप आप ही परजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कवमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किस भूख कमन तृपतावै। करन करावन करना हार, नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्ब कला पह प्रवीन, तह भेद कतेब कहा को चीन। जब अपन आप आप और तारा, तो सगन अप सगन कहा बिचारा। जह अपन ऊच अपना आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जन हो आप। जह शल छेद भेद समाया, ऊहा किस व्यापत माया। आपस कौ आप है आदेश, तेहो गुण का नाही प्रवेश। जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन चिंत किस लागा चिंता। जह अपन आप पति यारा, तह कौन कथा कौन सुनना हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को आप है पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार, तेहो गुण मह कीनो बिस्थार। पाप पुन्न तह पही कहावता, को नरक को स्वर्ग बंछावता। आल जाल माया जंजाल, हमे मोह भरम पै पहार। दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान। अपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तो नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप, जह पसरा पासार संत प्रताप। दुहु पाख का पह तनी, उनकी शोभा उनहु बनी। आपह कौतक करा आनंद चोज, आपह रस भोगन निर्जोग। जिस भावै तिस आपन नाए लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार था गणत तोला, जब बुलाव हो त्यों नानक दास बोला। श्लोक जिय जंत के ठाकुरा, पे वर्तन हार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी

गोबिंद भगत कै मन बिसराम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उदहारै। निर्मल सोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी।

सिख बार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे। पुरख जम पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करूं कबता बिद नाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कबल्यो सुधारो कबियों बाचो दोहरा जो निज प्रभु सो कहां सो कहूं जग माहे जो तेह प्रभु को त्याय है अंत सुर को जाहि दोहरा हर हर जन दोई एक है बेबिचार कठ नाही जल ते उपतरंग जो जल ही बिखै समाय दोहरा जब आए सु प्रभ को पयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा सुन छिपते सब कथ सुनाए काबा च दोहरा ठाड़ पयो मैं जोड़ करो बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा

कालपुरुष की देह मोह कोटक बिशन महेशो कोटिंदर ब्रह्म किते राक्षस करोर जलेशो दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत ने तो सुर्गवास रघुवर करं सगरी पुरी समेत चाउ पाई जो एह कथा सुन अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै बिशन भगत की ए फल होई आदि आछ सक न कोई सम्मत सत्रह

पाठ गुर ग्रंथन को ठाड जोड़ पंथन के आठ जाम संतन के सत्संग थाए है। भगति बबेक दान गुनिया को सन्मान चर चर रहाए ज्ञान अज्ञान जाए है।

बोले सोनाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

जपदिशदूर गावै को वेख हादरा दूर कथना कथी नावै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक बिगसावे प्रवाह।

जातः जातः च प्रच्छन्द त्वप्रसाद सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वप्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं सरूपे अपंगं बेपुते प्रमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्री कह मितो मी कह सदैवं प्रभा है जय है जा है भगवती छंद प्रसाद के जाहर जुहूर है के हाजर हजूर है मेसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाए करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है मेसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेसुल पेख है जमीनुल जमा है मीकुल इमा है करीमुल कमाल है जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुबास है के अजब स्वरूप हैं के मित्तो विपूत हैं के मित्तो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के मित्तो अपंग हैं मद भार छंद त्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बरागंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नरा खंड बरनरा मंडन पवनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम आन छे जांगा सना भंग उपमा पार गत मित उदार जल थला मंड दिस विसा भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास्त्र तर तुरास आ जान बाहो एक सदा ओ अंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबारा काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छे जगात आज जनम बात अन झंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठटा पार आडीठ धर्मात ढीठ कर मान ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाला है अरकाला है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमान्या है जग जान्या है सर्वं पर हैं सर्वं कर हैं सर्व पास्या हैं सर्वनाश्या हैं करुणा कर हैं विश्वं पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजप जप हैं थप थप हैं कृता कृत हैं मृत अमृत हैं अमृत अमृत हैं करुणा कृत हैं कृता कृत हैं तरणी तृत हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कृता कृत हैं मृता मृत हैं अजबा कृत हैं मृता मृत हैं निर्नायक हैं खलकायक हैं विश्वम पर हैं करुणाला हैं निरपनायक हैं सर्वपायक हैं पवपंजन हैं रगंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्मा हैं सर्वात्म हैं आत्म बास हैं जस के जस हैं पोजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके पंगी स्वरूपे नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक श्री छंद अजय अल भू अजो ना सका सगंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख अनाम काम गाह टाह नाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पोजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुलकुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजम भाव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दोकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं

कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बाक ध्यान लगायो नाथ फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बेख्यान सो बैठ कै सही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाहा को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पासा को मृतान को पूजन तहयो कूर क्रिया उर्ज्यो

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोकान आर श्लोक की महले पहले के लिखे पिंडिया सराजी की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने

पहला पहला मुसलमान सिर्फ शरीर पर पड़ कर विचार बंदी से जे पावे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूप अपार तीर्थ ना होए रचा पूजा गुरवास बहकार जोगी संत हम जिते अलख नाम करता और सुख मूर्त नाम निरंजन कायाकार सतिया मन संतोख उपजा देना कै विचार दे मंगे से सगुना सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खरा बाविकार एक होंदा कह चले था तेरा पिकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ कर आया कार जे आखे सो तू जाना है तेरा पी तेरी सार नानक भक्त

सुरग अवतार। हों विच हसै हों विच रोवै हों च भरिए हों च होवै हों विच जाति जिनसी खोवै हों च मूर्ख हों स्याणा मुख मुक्ति सार न जाना हों च माया हों विच छाया हों में कर कर जिनते पाया हों में बुझै तंदर सूझै ज्ञान में हुणा कथ कथ लुझै नानक हुकमी लिखिया ले।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खपोए खार कूड़ कूड़े न्यू लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनार।

0: कृति कृतवाओ जुग जुग फिर उठाए अगनि बुझता है सतगुरु संतो का धर्म गिरतवाओ त्रेता रजते का जोर गिरतवाओ द्वापर तपे का सत्य गिरतवाओ कलयुग रथगन का कूड़ गिरतवाओ महला पहला
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साज रहे साब को सत समावे कह रहे आप भरपूर राम नाम देवा में सूर नाले प्रशत जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर चली चंद्रा

0: धन सुमान सिन्हन का जोगल चले पाए, चौकड़ मुलन आया बैचों के पाया, सिखा कन चढ़ाई गुरु ब्राह्मण थे वो चढ़ पाया, वे तगा गया महला पहला।
1: लख चोरिया लख जारिया, लख कुड़िया लख गा,
2: लख ठगिया पैनामिया, रात दिन सजीना।

अस्ति असव वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमानो मिथ्या पशु प्रकृत गुमानो असर भगत साधकी शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर है मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रैरूपाद मिथ्या रचना भोजन अनुसंवाद मिथ्या चरण पर बकार को तावै मिथ्या मन पर बोल लोभ लभावै मिथ्या तन नहीं पर पुकारा मिथ्या बासलित बिकारा बिन बूझे मिथ्या सा पय सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरती सागत की आर जा सात बिना कह होवत सुचा बिरता नाम बिना तन गंध मुख आवता कह दुर्गंध बिन सिमरण दिन रहन बिरता बिहाई

साध पेटी संजोग साध की महिमा वेद न जाना जीता सुना तीता बख्याना साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की सोग शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बनयाई नानक साध प्रभेद न पाई सलोको मन साचा मुख साचा सोए अवर न पीखै किस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेपो जैसे जल मह कमल अलेपो ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोको जैसे सूर सर्व को सोखो ब्रह्म ज्ञानी कै दृढ़ समानो जैसे राज रंग को लागै तुलपवानो ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म

तुर कर्म। जिसका मन पार भ्रम का निवास हो, तिसका नाम सत राम दास हो। आत्म राम तिस नदरी आया, दास तंत्र पाई तन पाया। सदा निकट निकट हर जानो, सो दादर गह प्रवान। अपने दास को आप कृपा कराए, तिस दास को सब सो जी पराए। सगल संग आत्म दास हो, ऐसी जुक्त नानक राम दास हो। प्रभु की आज्ञा आत्मिता वै, जीवन मुक्त सो हो कहावै। ऐसा हर तैसा उस रोग, सदा आनंद तिह नहीं ब्योग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी। तैसा मान तैसा अमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुर कहिया जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित कर रखे तैसा तनाऊ। आपे करण करामण जोग, प्रभावै सोई फुन हो गए।

देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो पावे सोई फुन थियो। कबू ऊंच नीच महक बसाए, कबू सुख हरख रंग हसाए। कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू उब आकाश पयालो। कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आ मिलावन हार। कबू नित करै बोपात, कबू सोय रह दिन रात। कबू महाक्रोध बिकरालो, कबू सर्व की होत्र वालो। कबू होए बह बड़ राजा, कबू पेखारी नीच का साजा। कबू अपकीर्त में आवै, कबू पला पला कहावै। जो प्रभु रखै तिब ही रहै, गुरु प्रसाद नानक सच कहै। कबू होए पंडित करे बखियान, कबू मोलारी मोल तारी लावे ध्यान। कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख्यान।

उस स्थान ते बहुर न आवे। अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तरना व्रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म का संग। ज्यों जल मह जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सतगुरु बाण श्लोको।

जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आपा प्रसोए जो किचकी नोसो अपना रंग सब ते दूर सब का संग भूजा देखा करब बेक आपह आप अनेक मर न बिनसै आप न जाए नानक सद ही रहसमाए आप उपदेसा समझाए आपे रचिया सब का साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछु कहो करना हार उसते भिन्न कहो कछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलते आप करना हार कौत कर रंग पार मन मह अमर अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत स्वामी गुरप्रसाद किन विखयानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन बिरला चीना भला भला भला तेरा रूप आत सुंदर अपार अनूप

पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जानै आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाला जियन बहुपात जो जो रचियो सो तिसा त्यात जैस भाव तिस लय मिलाए भगत करहै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हरे कनाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई ऐस ते ऊपर नहीं बीचार जाका मन बसया निरंकार बंधन तोर पय निर्वैर आंदन पूजा है गुर के पैर एह लोक सुखी ए परलोक सोहेले नानक हर प्रभ आपै हमेले साध संग मिल कर हो आनंद गुण गाव हो प्रभ परमानंद राम नाम तत करहो बीचार दुर्लभ देह का करहो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुवाओ आठ पै

देशा पार ब्रह्म निकट कर पेखा। सास सास सिमरह गोबिंद, मन अंतर की उतर चिंद। आस नित त्याग हो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती कर हो, साध संग अगन सागर तर हो। हर धन के भर ले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहजानंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवारो धार हो जियो, गुण गोबिंद।

प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरित शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारा दुलभ देहे तत्काल उदाहरै निर्मल सोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे सुमानी